साधु मन का मान त्यागो मान त्यागण दे लई मन त्याग मन दे विच आउंदे इच्छावां दी पूर्ति दे लई असी की कुछ करते हैं जबकि हुण जिंदगी ये बन गई है कि साडे आपसी रिश्ते परिवार साथ सब कुछ टुटता नज़र आ रहा है असी घूमण फिर नूं जाना तरजीह दिंदे हां ते अगला भी वड्डा सवाल ये खड़ा हो गया कि असी कल्ले घूमण फिर नूं तरजीह दे के अपने मन दीआं खुशियां लभ रहे हां सोलो ट्रैवल दे नां ते तुसीं बहुत कुछ देखिया होवेगा बहुत लोग अपने आप नूं ट्रैवल दे नाम ते आवाजाई जाना अपने आप नूं तलाशन दी गल करदे ने जिंदगी दा सच जो सानू हुण तक ख्यालां दे विच मिल रहा है जो सानू साडे शास्त्रां दे विच मिल रहा है जो साडा उच्च ज्ञान विरासत है वह सानू यही दसदी है कि असीं जीणा किवें है दरअसल साडे अंदर दो धारी तलवार की तरह काम हुंदा है एक तो असीं उस ताकत और शोहर दे नशे नूं मनना चाहते हैं हुण ताकत कई लेवल पद्धर दी हुंदी है कोई वड्डे अहुदे ते बंदा बैठा होवे उसनू अपनी कुर्सी की ताकत हुंदी है उसका रंग ढंग बोलन सलीका पहन का तरीका इसकी गवाही दिंदियां ने किसी नू अपने पैसे की ताकत हुंदी है पर उसकी ताकत की गवाही महंगे बूट घड़ियां कारां कोठियां टैलीफोन लैके शो करने की कोशिश करता है अजिहे बंदे अक्सर दुनिया के दूजे बंद वेखते हैं जिमें कोई बंदा ना हो सच तो यह मनिया जाता है कि बंदे की असलीयत देखनी हो जो वह ताकत के नशे में हों तो वह देखता है कि मैं की कर सकता हाँ कहानी तो पुरानी जमाना अकबर बीरबल के जमाने भी सुनते हैं कभी कभी उन्होंने मैं किसी होर परपक्ष भी वेखदा हाँ राजे बेहद भुख लगी सी उहदे रसोईए ने उहनूं बैंगणां दी सब्जी बनाई राजे नूं भुख लगी सी बैंगण खा के बहुत खुश होया हुण जदों खाणा उदों सुआद लगदा जदों असीं भुखे होईए उसने हुक्म दित्ता कि हर रोज़ बैंगणां दी सब्जी बनाई जावे बीरबल लागे खड़ा सी अकबर दे कहिंदा जनाब वेखो ना सब्जी किन्नी वधिया है रब ने बैंगण दुनिया की सब तो वधिया सब्जी बनाई है कहिंदे इहदे नाल उम्र भी बंदे दी लंबी हुंदी है कई बीमारियों तो बचाऊंदा ते वेखो कुदरत ने उहदे सिर ते ताज भी दिता होया है सो राजे दा हुक्म सी सब्जी रोज़ बन लगी तीन चार दिन तो खा गया पंजवें दिन जदों राजा मूहरे बैंगण आए तो उसनूं गुस्सा चढ़ गया उहने कहा हर रोज़ बैंगण चुको इसनूं मैनूं तां इहदी शकल वेखणी पसंद नहीं बीरबल साहब बोले जनाब बैंगण भी कोई सब्जी है इस तों घटिया और कोई सब्जी नहीं रंग वेखो इहदा किद्दां काला कलूटा है राजा कहिंदा ओह तूं तां इहदी तारीफ बड़ी करदा सी ओह मैं कहा जनाब तुसीं इह देखो भी ताकत किहदे हत्थ विच है तुहाडे कि बैंगण दे सो मेरी गल करन दा मतलब इह है कि ताकत पैसे दी हुंदी है सरकारी अफसर अपने अहुदे नूं ताकत समझदा है ते सियासी नेता ताकत कुर्सी करके नहीं छड़दा वरना जिहड़ा कुर्सी ते बैज छड़दा मनुखता दी सेवा करना भी मैनूं लगदा हुंदा कई वारी असल बहाने हुंदे है साडे आले दुआले किन्नियां गैर सरकारी संस्थावां बणियां ने किन्ना असीं उहनां दे लई पैसा भी इकट्ठा करदे हां पर किते ना किते शोहरत और हमदर्दी दी फल लै के असीं तरक्की वल जाणा चाहुंदे हां मनो भावें ना ताकत दूजे का विगड़िया हुआ रूप तानाशाही हुंदा है पुराने राजे ताकत अपनी तानाशाही करके हुंदे सन अजोके युग दे राजे जो असी चुन के वोटां राही बना के भेजते हैं वो साढ़े ते ताकत अपनी मन मर्जी की चलाते ने अपने देश वल अखां झाती मार के वेख लो देश का जवान देश दे राखे उन्हां दी बनी सरकार उन्हां नूं छलियां वांगू कुटदी है इदां मारदी है जिवें उह धरती ते कीड़े मकौड़े हों वाकई सचमुच ते काकरोच ने ते शायद उन्हां नूं पैंदी कुट वेख के साडे अंदर
ਉਸ ਤਾਕਤਮਈ ਰਾਕਸ਼ਸ ਦਾ ਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਭੁੱਖ, ਲਾਲਚ, ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਵਾਪਣ, ਹਉਮੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗਰਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ।